0: saya cuba?
1: Saya? Sarang tamahina pavan kare shor.
0: Salah, salah.
1: Oh ya?
0: Pavan kare shor.
1: Pavan kare shor. Kenapa?
0: अरे बाबा शोर नहीं शोर शोर पवन करे शोर
1: पवन करे शोर
0: हाँ
1: या लालू